0: But even as solar development expands, not all nearby villages have access to electricity. At night, Bhagirath, one of Kishanji's brothers, returns to a house that still has no grid electricity. While transmission lines may run nearby, extending power to scattered desert settlements has been a challenge.
1: चारों तरफ सोलर प्लांट लगा हुआ है, घर में लाइट नहीं है। वो कोई छोटी मोटी लाइट बैटरी बूटी से उसे काम चलाते हैं और चारों तरफ सोलर की लाइट है। हमारी लाइट डानी में नहीं, मकान में लाइट।
0: His family relies on a small battery-powered light from a portable solar panel, enough only for basic needs.
1: नहीं है लाइट वजह से हमारे फसल नहीं ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। लाइट होती तो फसल ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं।
0: For families like Bhagirath's, the benefits of mass solar farm expansion that's happening in his very own village remain out of reach. In Norang Desar village, another challenge shapes daily life: water. Santosh and Suraibane begin the day by walking more than 2 kilometers to fetch water for their families and livestock.
2: हमारे पानी की बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे पास में गांव के पास में पानी कभी कभी मिलता भी नहीं है।
3: दूर जाके लाना पड़ता है, लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर जाके पैदल जाके लाना पड़ता है।
0: In many drought-prone parts of India, water is still delivered by tanker trucks, a temporary lifeline for villagers when local supplies run dry.
2: हमारे टैंकर से मंगवा रहे हैं और टैंकर 5-7 दिन नहीं आ रहा है। गर्मी में तो बहुत ही सारा ऊंट और पशु है, वो भी तीसा रहता है।
0: With the arrival of solar farms, that limited water supply is now shared. Panels need to be cleaned regularly, especially in the dusty desert.
3: हमारे यहाँ एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ सोलर प्लांट होने के कारण हमारे यहाँ टैंकर है वहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है हमारे लिए कि पानी यहाँ नहीं पहुँच रहा है हमारे लिए।
0: In the Thar Desert, where water has always been scarce, the demand for solar is placing new pressure on an already limited resource.

0: At the same time, solar is also bringing clear benefits. Farmers like Ram Dayal Chowdhury are seeing that firsthand.
1: ये प्रधान मंत्री कुसुम योजना है इनमें हमारे को लाभ मिलते हैं छोटे मोटे किसानों के लिए बहुत फायदा हुआ है मेरे पास 15 बीघा जमीन है उसमें मैंने ये सोलर पंप लगाया हुआ है
0: Ram receives subsidies to install solar pumps for irrigation, reducing his dependence on unreliable electricity.
1: इसी फायदे की वजह से मैंने ये लगाया है ये 10 पंप और 10 किलोवाट का सोलर पंप है करीब इनकी लागत 4.5 लाख रुपया से लगवाया है ये इनसे फायदा हमारे को होता है ये मतलब बिजली नहीं लगती है बिजली का हमेशा बिल भरना पड़ता है इनका एक बार पैसा लगा हमारे को
0: Instead of monthly bills, it's a one-time investment. And over time, that has made a difference.
1: वो फायदा हुआ हमारे को

0: अभी मेरे को एक बार ही पैसा देना पड़ता है। ये 10 HP की मोटर चल रही है हमारे यहाँ, इनका कोई खर्चा उर्चा नहीं है। ये 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक बराबर चलती है कंटिन्यू।
1: More than 2 million farmers across India currently benefit from this system.
0: कुल मिला के ये मतलब राजस्थान के अंदर ये फायदेमंद चीज है। ये हमारे पहले लाइट से चलता था, लाइट में हमारे वो परेशानी ज्यादा होती थी। वो 6 घंटा लाइट देते थे, कभी कटौती कर देते थे, कभी 4 घंटा भी कर देते थे। अब हमारे को मतलब 14 घंटा गर्मी में 12-14 घंटा तक इन सोलर पंप से लाइट चलती है, हमारे को डबल फायदा हो गया।
1: For farmers like Ram, solar power has become a practical solution.

0: Part that I'll be covering is voter ID of this individual that will help us to check the address that is mentioned in the form if he's residing there along with his family. And yes, in this case, we have his details available along with his family members is also further details available after we download the electoral roll. We have the data.
1: They discover the boy has two separate registered residential addresses. Other red flags are raised.
0: It's a strike of entity. So hinting towards that he was associated with this entity, but no longer now. So question mark on the job profile. What kind of work he's doing? Because if he's saying that if he's working, he's earning sufficient. So now question comes, where is he earning?
1: It's time to gather intelligence on the ground. Nidhi heads out with trainee detective Kajal.
2: तो जैसे फील वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे उनके नेबर्स या फिर रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से हम लोग बात करके और डिटेल्स निकाल सकते हैं तो हम लोग को इन्वेस्टिगेशन और इजी पड़ेगा और जैसे कि मैं लोन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के जा रही हूँ तो माइट बी आई गेट मोर डिटेल्स ऑफ इट और इन्वेस्टिगेशन में वो बहुत ईजी पड़ जाएगा हम लोग को बेसिकली हम उनके अगर घर जाएंगे तो हम उनको पता चलेगा कि हम इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने उनके घर नहीं जाएंगे हम उनके नेबर्स से पूछताछ करेंगे या फिर उनके रिलेटिव्स अगर रहे तो उनसे पूछताछ कर सकते हैं फिर उनके फ्रेंड्स रहेंगे उनसे बात कर सकते हैं हम लोग
3: और अगर आप किसी पोजीशन पे खड़े हो जैसे ये सपोजिंगली ये घर है आपको यहाँ पोजीशन लेनी है तो आपको डे वन जब आपका पोजीशन डे वन है आज एक घंटे पहले आके या दो घंटे पहले आके देखना है कि कहाँ आप अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हो जैसे अब ये घर है ये कॉर्नर हाउस है आप यहाँ पर रह सकते हो यहाँ पे चाय वाला है यू कैन इजीली स्टैंड यहाँ पे दो घंटे तीन घंटे भी रहोगे कोई नोटिस नहीं करेगा सेकेंड थिंग ये देखना है कि उस घर में या उसके बराबर वाले घर में सीसीटीवी तो नहीं है आजकल मोस्टली हाउसेज में सीसीटीवी है तो अगर सीसीटीवी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सीसीटीवी के एक्सेस में नहीं आना चाहिए आपकी पोजीशन वहाँ हो कि सीसीटीवी आपको कैप्चर ना कर सके
1: It's time for the rookie detective to put her skills to the test.
2: Namaste, मैं काजोल बैंक से हूँ लोन जी मैम आपका कोई लोन नहीं है वेरिफिकेशन के लिए आई हूँ आपके पास में कोई रहते हैं उन्होंने लोन लिया है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल चाहिए था हाँ हाँ
4: हाँ
2: ओके तो यहाँ पे रहते ही नहीं है
4: मम्मी पापा तो उनके यही रहते हैं कम रहता है
2: हाँ
4: हाँ रहता है
2: और उनकी मदर
4: मदर तो उनकी हाउसवाइफ है
2: ओके उनकी हाँ उनकी मदर उन गारंटर है हाँ
4: पहली बार आंटी के बारे में पूछ रहा हूँ मुझे एक्सपायर हो चुकी है उनको 8 साल हो गए
2: उनको तो समझी नहीं मैं
4: हाँ हाँ पहली वाइफ थी
2: ओके
4: वो 8 साल हो गए हमने
2: हाँ हाँ
4: अब जो है सेकंड मॉम चेक मॉम
2: हाँ उनका नाम क्या है
4: उनका नाम है
2: ओ
4: अब तो पापा से भी नहीं बनते
2: अब पापा से भी रिलेशन अच्छे नहीं है
4: अच्छे नहीं है साल दो साल में एक दो बार आ गया
2: हाँ हाँ
4: बाहर गली में तो लोग से पढ़ते
2: हैं हाँ हाँ
4: हाँ हाँ पे नहीं रहता है हमारा गड्ढी में जाता है मतलब घूमता फिरता रहता है
2: कोई बात नहीं मैडम थैंक यू डिटेल्स देने के लिए आपके समय के लिए धन्यवाद
1: Parents can choose how deep they want to dig. Most start with a $3,000 package. Unearthing deeper secrets costs more.
5: Ask anyone.
6: So love and marriage are two different things for people. Even you know people who have been into relationship for 8 years, 10 years time, they come to us to get their partners entered because now they're entering into married relationship, right? So which I think is very prudent, right? Everybody should get background checks done.
7: I remember जब हमने initially business start किया था, talking about 20 years, 25 years back, उस time arranged marriage या love marriage के लिए कोई proposal हमारे से आता था check के लिए, तो उनके words ये होते थे कि I know it's not good. ये अच्छी बात नहीं है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा और मैं बैकग्राउंड चेक करा रहा हूँ बट आई वॉन्ट क्योंकि कुछ सस्पिशन है कुछ डाउट्स हैं बट अभी इट्स वेरी चेंज एवरीबडी वॉन्ट्स कि बैकग्राउंड चेक होना चाहिए इट इज़ मस्ट

0: हमें क्लाइंट को देने से पहले हमें टेस्ट करना है, तो हम इसको हमेशा क्या करते हैं, देने से पहले अपनी गाड़ी में लगाए जरूर कुछ टेस्ट करते हैं खुद की, हाउ इज इट वर्किंग, हाउ इज फंक्शनिंग,
1: बस देखना स्लाइड ना हो, कुछ स्लाइड आराम से हो जाए।
2: तो अगर हम लीगली देखें सो वी आर सेफ, क्योंकि उनकी अपनी कार है, अपनी कार में वो खुद लगा रही है, सो हम और उन्हीं को एक्सेस दे रहे हैं, वो खुद ही सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करेंगे।
3: और हम जब भी वर्क प्लेस करते हैं क्लाइंट की कार में और क्लाइंट की प्रेजेंस में ही करते हैं, नॉट इन हर एब्सेंस, सो साथ में है तभी हम प्लेस कर रहे हैं। सो इन दिस केस हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट्स हैं, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी वर्क प्लेस करना होगा।

0: Kirrity will be nearby. Once she's in the field, she will have to rely on her wits.
1: And always remember one thing. कि जब आप इसे इन्वेस्टिगेशन करने जाते हो ना तो यू हैव टू यूज फोर थिंग्स राइट इट्स कॉल्ड फॉर्म FORM
2: ओके
1: व्हेन यू इफ यू हैव टू ब्रेक द आइस विद पीपल यू हैव टू टॉक अबाउट फोर थिंग्स दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मोटिवेशन ठीक है अपनी फैमिली के बारे में बताओ उनकी फैमिली के बारे में पूछो ठीक है उनकी ऑक्यूपेशन के बारे में पूछो अपनी ऑक्यूपेशन के बारे में बताओ डिटेल में भले ही अपने आप बारे में आप नकली बता रहे हो फिर भी बताओ ठीक है क्या चीज रिक्रिएशन में कहाँ पे आपको कुछ क्या काम करने आपको बड़ा मजा आता है एंड ऑल दैट उसका रिक्रिएट आप कैसे करते हो एंटरटेनमेंट के अपॉर्चुनिटीज के उसके बारे में बात करो मोटिवेशन क्या होता है कि आपको लाइफ में मोटिवेट क्या करता है ठीक है उसके बारे में बात करो तो इससे क्या होता है कि आप ना किसी से भी अपनी आईज इजीली ब्रेक कर पाते हो
0: द अंडरकवर एजेंट इज सेंट इनटू द फील्ड अंडर द गाइज ऑफ बीइंग अ फ्रीलांस मॉडल हु हैज रिसेंटली मूव्ड टू द सिटी and is looking for a room to rent. She approaches the target and strikes up a conversation.
3: आपको प्रॉपर्टीज देखनी है ना तो यहाँ पर नहीं दिखा दूँगा प्लीज कहाँ के रहने वाले हो
4: एक्चुअली बेसिकली आई स्टे विद माय पेरेंट्स इन बट मैं एज अ मॉडल काम करती हूँ तो मुझे
3: वो यू आर अ मॉडल दैट्स मी मॉडल इन द रेड आप क्या अकेले शूट करो ना
5: हाँ अकेले
3: अकेले शूट करो तो वहाँ पर क्या ना कि फैमिलीज की प्रॉब्लम नहीं होगी वो एरिया वैसे कि वहाँ पे फ्लैट बीच के फ्लैट बहुत सारे अवेलेबल है तो वहाँ पर फैमिलीज वाला जो बिल्डिंग्स होती है वो थोड़ी सेक्लूडेड सी
4: वो प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना कि एक टाइमिंग
3: दे दो ठीक है उसमें मैं आपको सारी डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगा
0: दे एक्सचेंज नंबर्स स्प्रिंगिंग सच अ ट्रैप इज अ मैटर ऑफ सम कंट्रोवर्सी इन इंडिया It falls within a legal gray area. The team walks a razor's edge, navigating through shades of legality to deliver the footage the client has paid for.
6: Now, privacy is of two kinds. Privacy at a private place, privacy at a public place. Right? Privacy at a private place is what? Privacy at a private place is a privacy that something is doing something inside his house. You cannot go and place the cameras inside his house. If someone has entered into a hotel room, you cannot go inside and place the cameras inside a hotel room. Right? But if you're roaming around at public places, right? If you're doing something notorious at public places, you are in a shopping mall, in a cinema hall, you are in a nightclub, you know, or wherever you are, it's a publicly available information.
0: It doesn't take long before the boy starts texting her. They plan to meet the next day.
4: He has texted me ki where I have reached right now. So I told him that it will take next 10 to 15 minutes. And then I asked him ki where is he. He told me ki wo kafi eagerly mera wait kar rahe the, so he is already there. Yeah, of course, jitna mujhe bataya gaya hai, I am expecting ki main enough evidence jo hai is project ki collect kar saku nikal saku and word it bana saku is project ko and frankly speaking when I was hired for this project to of course main thodi nervous bhi thi and right now also I am a bit nervous and a lot of excitement is there in me first day pe to hamara bahut normal conversation tha regarding our job regarding my work with him ki mujhe kya chahiye kya nahi chahiye property mein everything and then next day when he texted me shuru mein it was very normal and basic ki hi how are you and all that and then suddenly wo thoda sa flirty hone lage and fir wo mujhe thoda bahut text karne lage ki okay so you look nice ya kuch waisa तो उस टाइम पर मुझे समझ में आ गया था कि मैं एविडेंस अच्छे से कलेक्ट कर लूँगी एंड उसके वजह से मैं अभी भी नर्वस हूँ थोड़ी कि चीज़ें ज़्यादा दूर ना पहुँच जाए दैट्स इट ऑफ कोर्स आई एम कंसर्न अबाउट माय सेफ्टी बट आई गेस टीम मेरे साथ रहेगी ही हमेशा एंड वेन एवर आई नीड आनंद जी हैं पूरी टीम है
0: द अंडरकवर एजेंट हैज अ हिडन कैमरा इन अ हैंडबैग She will need to collect enough evidence for the clients to convince their daughter that the boy's loyalties are in question.

ठीक है, मतलब अभी यहाँ से डिनर करके पार्टी वार्टी करने अभी जा सकता है। आज भी एम फ्री एम आप भी फ्री हो चाहिए।